0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।

ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मेरे धन जो बीमार या लाचार है, भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों, आज शनिचर शनिवार का दिन है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह, शुभ दिन, शुभ वीकेंड बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों, हर एक इंफॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड के जरिए, कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। बस आप सभी सुनने वालों को वेलकम, स्वागत किया जा रहा है प्रोग्राम भजन यात्रा में। और चले भजन यात्रा प्रोग्राम में, पहला भजन हमेशा होता है हरी हरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारे सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त।

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। शनिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह, शुभ दिन, शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। भजन जो आपकी बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में, हम आपको ले चलते हैं खासतौर पर बेला जी की आवाज में ये सुंदर भजन जो पेश किया जा रहा है।

सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। भजन यात्रा का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, चले अबकी बार खास सुंदर भजन जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पंडित जय शंकर जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन आपने सुना। चले आपकी बार एक सुंदर राम जी का भजन पेश किया जा रहा है और होगा प्रोग्राम में खासतौर पर अशोक घरे की आवाज में ये सुंदर सा भजन।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले सुंदर भजन जो अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आज की इस शनिवार की सुबह की प्रोग्राम में, प्रोग्राम भजन यात्रा जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है।

रेडियो वेव्स पे इसकी सर ये हरिओम शरण जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए सुनने वालों, हम आपको ले चलते हैं अब की बार खास तौर पर श्री हनुमान चालीसा की ओर, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस की जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आप सभी सुनने वालों की सेवा में श्री हनुमान चालीसा बस पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस की जरिए। जरूर सुनते ही रहना।

0: और रेडियो SBS के जरिए सुंदर और सुंदर श्री हनुमान चालीसा बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं बजरंग बाण की ओर, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।
1: रुद्रावतार श्री हनुमान जी में भगवान रुद्र के गुणों की झलक आंचल के दीप की तरह स्पष्ट परिलक्षित होती है। श्री रुद्र शमशान वासी हैं, श्री हनुमान जी गिरिवन वासी हैं। शिव जी ने विषपान किया था, हनुमान जी ने सूर्य बिंब को ही निगल लिया था। श्री शिव जी सर्पों की माला पहनते हैं, श्री हनुमान जी को नाग यज्ञोपवीति कहा गया है। शिव जी आशुतोष है अर्थात शीघ्र प्रसन्न होते हैं। श्री हनुमान जी भी दुखों के दलदल में फंसे हुए अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं। जिमे अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेउ हनुमाना।

दर्शा बजरंग बान बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में चले यहां से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ और शुभ वीकेंड के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम आप सभी सुनवालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज शनिवार का दिन है, 30 तारीख मई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। 9:00 प्रोग्राम में 10 मिनट व्यतीत हो चुका है। सभी सुनवालों को एक बार फिर से शुभ सुबह, शुभ दिन, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं, शुभ विज्ञान पेश किया जा रहा है। आज का मौसम भी खूबसूरत सुहाना मौसम होने वाले है। कहीं कहीं बादल छाया हुआ मौसम होगा और जहां पर बादल छाया हुआ मौसम होगा वहां पर रिमझिम बारिश भी हो सकता है। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त प्रोग्राम सुनते हैं हॉलैंड देश के अंदर, हॉलैंड देश के बाहर, देश विदेश में भी काफी सुनने वालों, बस इंटरनेट के सहारे हमारा रेडियो SBS का ये प्रोग्राम को हमेशा और हमेशा सुनते हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन, रहूंगा आपके साथ करीबन 2 बजे तक प्रोग्राम लेकर के। बाहर सुनवालो ऐप द्वारा खबर किया है, तार द्वारा भी खबर किया है कि आहिस्ता आहिस्ता गर्मी हो रहा है, लेकिन यहाँ स्टूडियो के अंदर में ठंडी ठंडी सा है। तो आप सभी को गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ स्वागत करते हुए आपको हम ले चलते हैं पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम की ओर। पहला गाना पेश करने से पहले आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है। तो चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं पहला पुरानी फिल्म का गाना की ओर। आज शनिवार की खास सुबह की प्रोग्राम में पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना।

0: में ये काफी प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आज उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं।
1: साथिया

ये खास गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। इसी तार की नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। जरूर और जरूर सुनते ही रहना मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है सी रामचंद्र का संगीत पर। गाना को आप सुनते ही रहना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना।

रेडियो एस बी एस की सर ये गाना बस भूपिंदर की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस भी इसकी गई रेडियो एस बी एस की सर ये। चलिए प्रोग्राम में अगली बार मोहम्मद रफी एन लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार की आवाज में अब की बार ये गाना आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.nl उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन मोबाइल फोन की जरिए टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

पद्मा श्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं और अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है

और रेडियो SBS के जरिए किशोर कुमार की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। सुनने वालों, स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। चले प्रोग्राम में अब की बार सुमन कल्याणपुर की ओर हम आपको ले चलते हैं।

रेडियो SBS के जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुमन कल्याणपुर की आवाज में

महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, पुरानी नख में पुरानी गीत आप सभी के लिए बस पेश किया जा रहा है।

0: कर लो
1: जवा हो माशा अल्लाह तुम जवा हो माशा अल्लाह तुम
2: बदमाशरी मोहम्मद रफी की आवाज में खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है।

फ्रॉम एलियंस द माइटी मुकीस की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले आज के प्रोग्राम में गीता दत्त की और हम आपको ले चलते हैं और गीता दत्त की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार लता मंगेशकर और मुकेश जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में फिल्म का नाम तकदीर, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 0385656560।

और सभी सुनने वालों की सेवा भी। चलिए अब की बार किशोर द मैन विद द क्वीन वॉइस किशोर कुमार की आवाज

उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई। फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है, उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अब की बार उदित नारायण और अलका जी की ओर एक और काफी खूबसूरत प्यार भरी गाना पेश किया जा रहा है।

जितना राय और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश की गई तेरे नाम। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, वेबसाइट होता है रेडियो SBS.com। उदित नारायण और अलका के बाद एक और काफी खूबसूरत प्यार भरी गाना कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में अब की बार ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आसरों मीठे की सुनकर और बेहद पसंद करेंगे।

ये काफी प्यार भरी गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई है रेडियो SBS की जरिए। तेरी चाहत में दिल ये दीवाना हुआ, कुमार सानू और साधना सरगम ने फरमाया आज की प्रोग्राम में। चले प्रोग्राम में सोनू निगम एंड अलका जी की ओर। सोनू निगम एंड अलका

सोनू निगम और अलका जी की आवाज में गाना परदेसी बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए भी आपने सुना। 030-262-6611 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है। गाना जो आपकी बार पेश होगा कविता कृष्णमूर्ति एंड सोनू निगम की आवाज में। सभी हित नगमे रेडियो SBS की जरिए बस पेश किया जा रहा है संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS।

प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए शहरी तरह से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले कुमार सानू एंड साधना सरगम की ओर। मैंने कहा ना सभी हिट गाने इसी रेडियो स्टेशन की जरिए बस पेश किया जा रहा है। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS।

सरगम के आवाज में ये खूबसूरत गाना बस पेश की गई है। सुन बलो हरे काम काज के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325656560। अभिजीत औरल का प्रोग्राम में

अभिजीतौर आलका की आवाज में ये गाना पेश की गई, मेरी चाहतों का समुंदर तू देखो।

किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को अन हेलो गुडमिदा शुभ दोपहर पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS की जरिए लोकल टाइम का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। तकरीबन 2 बजे तक ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है, तो जरूर है और जरूर इस प्रोग्राम को आप सुनते ही रहना।

लोकल टाइम प्रोग्राम का पहला गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। चलिए प्रोग्राम में फिर बार उमर की ओर हम आपको ले चलते हैं।

लोकल टाइम का प्रोग्राम भी पेश की गई है। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए दुनिया की कोने कोने में। उम्र के बाद निजाम प्रोग्राम में

निजाम की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में ये काफी पुरानी फिल्म

कहता है दिल कि तुम हो बस सिर्फ मेरे लिए। रेडियो SBS की सर ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। चले प्रोग्राम में प्रवेश की ओर और अब की बार गाना का बोल है कितना सुकून। आज की इस लोकल टाइम की प्रोग्राम में ये गाना

प्रवेश के आवास में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए कितना सुकून है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को अनहेले खुदमेदाख शुभ दोपहर। जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में

एडवांस में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चलिए गाना आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है सुदेश और दीवानों की आवाज में और गाना का बोल है रूप तेरा मस्ताना।

के आवास में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो SBS का सभी को वेलकम लोकल टाइम का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अब की बार नवीन की ओर हम आपको ले चलते हैं एक ट्विस्ट मेटली प्रोग्राम में।

Marcel van Buren. क्या बांस में ये गाना पेश की गए आप सभी सुन वालों की सेवा में. आसरा उम्मीद है आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है. चले प्रोग्राम में मोती माला भोला सिंह.

जरिए। ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं रेडियो SBS का। चले प्रोग्राम में अबकी बार गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है प्रवीण की आवाज में। गाना को आप सुनते ही रहना आप सभी सुनने वालों की सेवा में। ये गाना पेश किया जा रहा है

दोस्ती मेडली। अभी आपने सुना खासतौर पर परवीन की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए ये खास गाना जो अभी आपने सुना लाइव के जरिए रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है खासतौर पर लोकल टाइम का प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में उबर की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। उबर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।

रेडियो SBS के जरिए। ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई उमर की आवाज में अभी आपने सुना। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और हर एक इंटरनेट रेडियो के जरिए दुनिया की कोने कोने में ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं और बहुत से सुनने वालों भी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी प्रोग्राम सुनते हैं।

और रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं, सुनते हैं, वीकेंड है, छुट्टी का दिन है। प्रवेश की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है, दिल है कि मानता

प्रवेश के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में आज की इस लोकल टाइम का प्रोग्राम भी आसर उम्मीद है कि ये गाना आपने सुना, दिल है के मानता नहीं, बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में संजय जोधा की ओर हम आपको ले चलते हैं और अब की बार गाना पेश होगा

0: चलिए एक आखिरी गाना, आखिरी गाना बस आज की लोकल टाइम का प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। और इसी गाना के साथ लोकल टाइम का प्रोग्राम जो है खत्म समाप्त होने पर आ गए है। आखिरी गाना पेश किया जा रहा है और इसी गाना के साथ मुझे इशादत और आज्ञा दीजिए।
1: परवाने से परे चला जा,
0: बस हम आप सभी सुनने वालों से बस फिर मिलूंगा। लोकल टाइम का प्रोग्राम सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन। सभी सुनने वालों को शुभ वीकेंड।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आर जे अंशली करमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशली करमलाल, दी फहारते वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। वेल रिएक्शन कैन एट ऑल टाइम सर्फ मना द वेबसाइट www.radiosbs.nl।

आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। आपने सुना कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म हम दिल दे चुके सनम से, और अब आप सुनिए एक पहेली लीला से तुलसी कुमार की आवाज में मेरे सैया सुपरस्टार।

जहां भी जाएगी तेरे पीछे पीछे मैं आऊंगा। आई लव यू माई एंजल वॉज द फिल्म प्यारे मोहन एंड इश्क सॉन्ग डोर कुनाल गांजावाला। Het volgende liedje via Radio SBS in het programma Gieten Kelleher is gezongen door Arijit Singh. Uit de film Holiday komt Aaj Dil Shayarana Lagta Hai.

हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म से आपने सुना टाइटल सॉन्ग अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में, और अब हम सुनते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से मुंबई दिल्ली की कुड़िया।

चली आई चली आई इज द फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ गजौन दूर चित्रा एंड के एंड द फिल्म कांटे कॉम्त इश्क समंदर।

0: Churakje dumera, guria chili. Deze keer is dit liedje gezongen door Benny de Jaal en Mol Malik en Anu Malik. En kwam uit de film Hangama 2. Uit de film Ghail komt dan Pyar te moet zeker tiho, don't say no. Gezongen door Shabbir Kumar.
1: Please.
2: Thank you.
3: वर्षा जी, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो।
2: तुम्हें कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चू कौन हूँ मैं।
3: मलिका शरारती है। वो तो ऐसे मजा करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे।

सुना है तेरे दिल पे मेरा, कहीं ना कहीं नाम लिखा है। देसी केर खसों दो जुबेन नौटियाल है द फिल्म सनक। हाँ वादा फैदर में शैलेंद्र सिंह मैथ आउट द फिल्म जमाने को दिखाना है। होगा तुमसे प्यारा कौन।

सपनों का राजा कोई दिल में था मेरे समाया, आज मुझे मिल गया है, यही है यही है यही है मेरा प्यार. Dit prachtig liedje is gezongen door Shailendra Singh en Sulakshana Pandit en kwam uit de film Chalte Chalte. Gezongen door Jibin Nautiyal en Preetam komt het volgende liedje via Radio SBS in het programma Geeton Ke Leher. Uit de film Tadap komt Tu Mera Ho Gaya Hai.

दिलबर मेरे, कब तक मुझे यूं ऐसे ही तड़पाओगे, वॉज आर द फिल्म सत्य पे सत्ता फन अमिताभ बच्चन एंड हेमा मालिनी। Gaan we verder met uit de film Love Yatri. In het programma Gitonkelher via Radio SBS is gezongen door Atif Aslam Terahua.

हाय, क्या थे वो दिन। बस द फिल्म छिछोरे, द फिल्म फन सुशांत सिंह राजपूत सामा में श्रद्धा कपूर, दिलीदेश खजांदोर तुषार जोशी। खजांदोर अलका याचिक कम तुत फोहत लीजिए इन प्रोग्रामा गीतों के लहर। द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे, कौन क्या हुआ तुझे।